0: गिलास तुम कुफाफी।
1: सूतु सूत सानने रजगले मंदे मंदी तुम्हां मता का इसके आराम पिसले तुम सब तुम कुफला रहे म्याना का तीन म्याना का काम रहे इतनी म्याना करे अन्ना ना फिक्री जानी जलू रीस के जान कों को रीस के जान को वा ये जन के जान मंदी तुम्हां मता का इसके आराम ने ये जन के रीस के जान पा ना जब फिक्री जान मु उतनी मान लेकिन फिर लेन देसाना को दे मना रखा ना वो सेमु सेमु जान ले फिर देसाना दे फिर मना रखा ना तेंदे ये देमरा रे ना तब फिर तो सोम तांस मिरी जाने सें जब दे दे
2: क्या ना काफी ना सु पफतारा कौन सा है ये फिर ना काफी ना जाने मार सुट सा वो ना चार चार ले तीन रुपये
3: का क्या saya nak buat apa? Suit tu jadi semua fikirlah cang suit tu suit sah, jadi suit. Suit tu saya nak fikir, timnya nak cari tu nanti tiada walas sah jam susu tu mula lah sah tu ni saya. Saya mampu yeri naja yang zaman tu ni mampu naja rakun sih, tapi tanjo nanti tunggu awak ni.
4: Saya nak fikir suit tu, le ulah nanti tunggu sa, apa ni? Tiko nak kene ciri arah, tapi nane tiko. Arakan fanrinwe tei teta Madagascar de sutun mitso san ye fankerezana wasere de mafinasha ne tonareo fa tena we makafit ko antilus mamtsikti izay tena we tsimanatsaly ti zany e ye tsimtoveny any velany fa manana netsika manokana tsika
0: sotra tombokola sotra tombokovava.

0: तुमको वाह भी
1: ते मानना नहीं अंडरकिन आरा इकोलॉजी के वो लोग ने मानना नहीं अंडरकिन आरा इकोनॉमिक फारू जानवे मानो फेरुवन जान जो कहते ने ते चारे आरुवन फुट निजू फा आताकुज़ आज़ा उन रो सही लांज़ा इकोनॉमिक सही आफाना मापन रूस न्यूल लमंडित ना फालंज़ा फापुआरी आफाना यंग चुमा मिर्च का फावे निफिशी ना फालंज़ा फापुआरी ते चफानेरे ना न्यूल लायारु फा फाना पीना न्यूल आमनी फिल्टेन न्या अंदावनांफ